पाए, जब तब संयम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख हो वै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब ले जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा, सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा, सो भगवती जो भगवंतै जाणै। गुर प्रसादी आप पछाणै, धावत राखै इकत कर आणै। जीवित मरै हर नाम वखाणै, ऐसा भगवती उत्तम होए। नानक सच समावै सोए। महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए। पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मन लाए। बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए, सत्संग स्यों बाद रचाए। अंदिन दुखिया दूजे पाए रचाए, हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए। पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा, जो सिर साई।

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नामै अगै आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखणी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकी, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौपे कंत कौ, सब दे तरे प्यार। बिन नामै कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएं दे, डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आवै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारां दे वड़ियाई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख ली ओए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दी ओए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार। पिर छोड़िया कर अपना, पर पुरखे नाल प्यार। तृष्णा करे न चुके, जल्दी करे पुकार। नानक बिन नामै कूप सोहणी, पर हर छोड़ी पतार। महला तीजा। शब्द रती सोहागणी, सतगुर कै पाए प्यार। सदा रावे प्रे अपना, सच्चै प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी, सोभावंती नार। नानक नाम सोहागणी, मेली मिलनहार। पौड़ी। हर तेरी सब करै उस्त, तो जिन फाथे काढ़िया। हर तुदनो करै सब नमस्कार, जिन पापै ते राखिया। हर निमाणिया तू माण, हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया। हर हंकारियां मार निवाए, मन मुख मूड साध्या। हर भगतां दे वड़ियाई, गरीबा नाथिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर कै पाणे जो चलै, तिस वड़ियाई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मिट न सकै कोए। किरपा करे जिसे अपनी, तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है, गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा। नानक हर नाम जिनिया राधिया, अंधन हर लिवतार। माया बंदी खसम की, तिने अगै कुमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़िया, हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया, तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी, तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या, तिनी तरिया पौजल संसार। सब औगुण गुणी मिटाया, गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी। हर की भगतां प्रतीत, हर सब के जानदा। हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय, जा नाही धर्म मारदा। सच्चा साहेब सच न्याओ, पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा, यंत्र रखा और तार। साला ही सो प्रभ सदा सदा, गुर कै हित प्यार। नानक जिस नजर करे, तिस मेल लए। साई सुहागण नार। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नजर करे। मानस ते देवते पए, तया नाम हरे। हम मैं मार मिलायन, गुर कै सब तरे। नानक सहि समायन, हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी। हरे अपनी भगत कराए, वड़ियाई वेखालियन। अपनी आप करे प्रतीत, आपे सेवकालियन। हर भगतां नो दे आनंद, थिर करी बहालियन। पापियां नो ना दे थिर रहन, चुन नरक कोर चालियन। हर भगतां नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला।
ਕਬਦ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਾਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਿਹ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ

पूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुरमत बिन सीख बोध्या पागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यो तुद ते आई, एहो दान मुहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावै सो होना जियो। जिसदा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु उठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरत नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाणे जियो प्रमृणे की है निशानी मने को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवां कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किछु ना जापे अपने संतां नू आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवां सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबाणो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जी वैजन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवां रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलता।

माज महला पंजवां अथ है तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओठ तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेवया तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद जिन

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंध जागी, बाह पकड़ो ते स्वामी मेरे।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सा लाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सा लाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नहि चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सदरै समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच नि चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समह समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया
ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ। ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जाय आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

तू आपे दुख सुख देवै करते गुरमुख हर दे खावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्द उपजै अमृत बाणी गुरमुख आख सुनावणिया आपे करता आपे भुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा

आपे करे कराए आपे, आपे थापो थापे आपे, तू ते बाहर कछु ना होवे, तू आपे कर लावण्या। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावण्या। आपे उच्चा उच्चो होई, जिस्या विखाले सो वेखै कोई, नानक नाम वसै कटे अंतर, आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई, गुर प्रसादी कर ही मह पाई, सदा सिरे वी एक मन त्याई, गुरमुख सच समावण्या। हाउ वारी जियो वारी, जग जीवन मन वसावण्या। हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावण्या। रहाओ करी मैं तरती तौल पाताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत सहज समावण्या। काया अंदर हों मैं मेरा, जमण मरण ना चुके फेरा, गुरमुख होवे।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा वापारी लाहा नाम सद पावणिया। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणिया। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हौ मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देश जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ै प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणिया। पेयड़ै पिर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया। कामन पिर राख्या कंठ लाए शब्दे पिर रावै से सुहावणिया। आपे देवै सद बुलाए अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई अंदन सदा गुण गावणिया। माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा। हर रंग रहै सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणिया। हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणिया। गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ अलाख्या पेओ हर रया समाए उपाय न किती पाया जाए। कृपा करे ता सतगुर भेटै नदरी मेल मिलावणिया। दूजै पाए पड़ै नहीं बूजै त्रिबद माया कारण लूजै। त्रिबद बंधन टूटै गुरसबदी मुक्त करावणिया। एहो मन चंचल वस न आवै दुबदा लागै दै दिस्तावै। बिखका कीड़ा बिख मै राता बिखी माए पचावणिया। हाँ हाँ करे तै आप जनाए बहु कर्म करै कि थाए न पाए। तुते बाहर किशु ना होवै बख्शे शब्द सुहावणिया। उपजै पचै हर बूजै नाही अंदन दूजै पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलतना सोभा पलतना ढोई बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता पूरे गुर कै शब्द पछाता।

तुद जेवड़दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावने।

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवने ऐथे उथे तू है रखवाला मात कर मैं तुम ही पाला माया गन्ना पोहै तिन कौ रंग रते गुण गावने आ क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बने अवर न जानने आ जिस कहो तू प्रभु पया सहाई तिस तत्ती वाव न लगे काई तू साहेब शरण सुखदाता सतसंगत जब प्रगटा बनिया तू ऊचा था हुआ पारा मोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकराई नानक बल बल जावनिया माज महला पंजवां घर दूजा नित नित दै संभालीए मूला मनो विसारीए रहाओ संता संगत पाईए जे जमकै पंथ न जाईए तोसा हर का नाम लै तेरे कुले न लागे गाल जियो जो सवरंदे साई है नरक न सही पाई है तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया है जियो सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजया सही गंभीर पार जियो हर अमे और साइन पीवी है मोह डिठे जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नानक तारियां नु जिता जन्म अपार जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवां घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे सरन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेविया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर जा पई ठरूरे करते किया तपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थके आए प्रभ की साम तेन दुदै ते बाहरी किते ना आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइये विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाईए रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा
ਇਕ ਖੇਨੁ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿੰਨਾ ਪਾਗ ਮਣਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰਿ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹੋ, ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹੋ। ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ, ਦੈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मुया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार, महला पहला। दस बाल तन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै तुदे आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुदे आपो जगत खुआया तिसना अंदर अगन है न तिपते भुखा तिहाया सहसा उस संसार है मर जमै आया जाया बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना पैरा बाजो चलना मेर हथा करना जीबे बाजो बोलना यो जीवत मरना नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना महला दूजा दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगै तहाए पह के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे नानक है सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया हम मैं गर्व ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया ज्यो पावै त्यो रख तू सब करे तेरा कराया इकना बख्शै मेल लै गुरमती तुदै लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चे नहि समाया श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आलो कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने हमें भी दुख काले नानक गुरमुख हमें टुटै ता हर हर नाम ते आवै नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुख उठे रोग पाप कमाया हर खो सोग विजोग उपाय पाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सुहोग न चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुक सच्चा लाए ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए जे अगै तीर्थ होए ता मल है छपड़ ना तै सगवी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सिरिट छिड़ाए जन नानक तिस बारे हारण जो आप जपै अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा एक भगवा वेस कर फिरै जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा वृथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम काल सिरो न उतरै त्रिवद मनसा गुरमती काल न आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना सियासा ते निरासा श्लोक महला पहला जे रत लगै कपड़ै जमा होए पलीत जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाम खुदाए का दिल हच्छै मुख ले हो अवर दिवा जे दुनी के झूठे अमल करे हो महला पहला जा हो नाही ता क्या खा क्यों नाही क्या होवा कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गूहोवा नानक कहंदा होए कै दसे राह है
ਸਭ ਸਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾ ਪੈ ਪੌੜੀ। ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਲਖਿਆ ਪਾਰਾ। ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੜੀਐ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟਿਆ, ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ। ਜਿਸਦਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਰਨੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਚਪੀਰ, ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਪਿਸ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ।

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला एक मांसाहारी एक तृण खाए एक नाशति अमृत पाहे एक मिटिया मैं मिटिया खाहे एक पौण सुमारी पौण सुमार एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है वेणा में सब वेस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाई विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा साला है पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला तुद पावै ता वावै गावै तुद पावै जल नावै जा तुद पावै ता करै बिपूता सिंगी नाद वजावै जा तुद पावै ता पड़ै कतेबा मुला सिह कहावै जा तुद पावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुद पावै तेग वगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुद पावै जाए दसंतर सुन गल्लां कर आवै जा तुद पावै ना रचावै तुद पाणे तू पावै नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप। पौड़ी सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है। लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दह दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़िया मावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हाउ पाल विकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई विच हम मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बेदगत होई। महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरम कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगतां तै सह सारियां जोड़ कदे ना आया करता आपा भुल है ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलिया नु जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खोआया नु जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अंदर नाम ते आया। दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया उना खसमै कै दार मुख उजले सच्चा शब्द सुहाया। सलोक महला पहला साबाही सा लाहा जिनी त्याया एक मानो सेई पूरे साहा वक्त है उपर लड़ मोए।

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुरपीर चौथे पैर सबाह कै सुरत्या उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवे नजर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास ओथे पापुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास ओथे खोटे सकती है खरे कीचे सा बास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा पोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पति आए सच विगस्या सच्चे कोट गिराए निज कर वस्या सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चे दै दी बाण कूण ना जाइए झूठो झूठ वखाण सो महल खुवाई है सच्चे सबरी सान ठाक ना पाई है ससुण बुझ वखाण महल बुलाई है श्लोक महला पहला पहरा अग्न हिवै कर बादा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाग चलाई तारता राजी अंबर तोली पिछे टंग चढ़ाई एवड वदा मावा नाही सबसा नथ चलाई एता तान होवे मन अंदर करी पे आख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस उपर सच नाम वड्याई महला दूजा आखने आख न रजिया सुन न रजे कन अखी देख न रजिया गुण गाह के कवन भुखिया भुख न उतरे गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कै गुणी समाए पौड़ी विण सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है विण सच्चे कूड़ यार बन चलाई है विण सच्चे तन शार शार लाई है विण सच्चे सब भुख जे पै जै खाई है विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़ै लालच लग मैल खुवाई है सब जग ठग्यो ठग आई है जाई है तन मै तृष्णा अग शब्द बुझाई है श्लोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै कर्म ध्यान पत के साध खांदा लह दाना कै सिरदान महला पहला
सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल। नानक कर्म होवे मुख मस्तक, लिखिया होवे लेख, 68 तीर्थ गुर की चरणी, पूजे सदा वसेख। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवै दजै नानका, तरिय कर्मी लग पौड़ी। जीव दे अमर मार न पछो ताई है, झूठा है संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल, सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत ना चसा विलम, परिय पाई है, गुर प्रसादी भुज सच समाई है। श्लोक महला पहला। तुम्मी तुम्मा विस, आकत तूरा निम फल, मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आवही। नानक कहिय किसो, हंडन करमा बाहरे महला पहला। मत पंखेरू किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अकडाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है साहिब लगी रीत पौड़ी। केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझे पावना। खड़ दर्शन कह भेख, किसे सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना। मन्ने नाम बिसंख, दरगे पावना, खालक कहो आदेश ढाडी गावना। नानक जुग जुग एक मन वसावना, श्लोक महला दूजा। मंत्री होए अठूं हिया, नांगी लगे जाए, अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। हुक्म पया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यो मनमुख अड़े, डुबे हक न आए। दुहा सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यो पाए, नानक ए वै जानिए, सब कित सहर जाए। महला दूजा। नानक परखे आप कहो ता पारख जान, रोग दारू दोवै बुझै ता वैद सुजान, वाट ना करी मामला जाने मेहमान। मूल जान गल्ला करे हान लाए हान, लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान। सर संदे आगास कहो क्यों पहुंचे बाण, अगे ओ आगम है वाहे दड़ जान पौड़ी। नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया, करण भगत दिन रात ना रहनी वारिया। महिला मंज निवास शब्द सवारिया, सच कहन अरदास से वेचारिया। सोहन खसमे पास हुक्म सिधारिया, सखी कहन अरदास मनो प्यारिया। बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया, शब्द सवारी आस अमृत पीविया। श्लोक महला पहला। मारू मिह ना त्रिपत्या, अग्गी लह ना भुख, राजा राज ना त्रिपत्या, सायर परे किसको, नानक सचे नाम की। केती पुछा पुछ महला दूजा, नेह फलंग तस जनमस, जावद ब्रह्म ना बिंदते। सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के, कारण कारण समर्थ है, कहो नानक विचार कारण करते वस है। जिन कल रखी तार पौड़ी, खसमै कै दरबार ढाडी वसया, सचा खसम कलाण कमल विगसया। खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया, सच्चा सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दसिया। सच्चा शब्द विचार काल विधंसिया, ढाडी कथया कथ शब्द सवारिया। नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। श्लोक महला पहला। खतियो जम्मे खते कार,
ਨਿਤ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ, ਧੋਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸਭ ਧੋਵਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਐ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਹੀ ਪਾਹੇ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਪੌੜੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖਿਆ ਲੱਖ ਸਿਰਜ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਉੱਜੜ ਭੁੱਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹੋ ਸੱਚ ਸਮਾਲਿਆ, ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਕਰਾਹੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆ, ਨੇੜਰਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ, ਨਾਵੋਂ ਪੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾ ਲਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਪੈ ਮਰੈ, ਭੀ ਪਉ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈਵਣ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੈਵਣ ਜੇ ਮਰੈ ਮੋਹਿ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਮਹੂ ਝੂਰੀ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ।

आगे पाछे हुक्म समाए हंस हित आसा असमान तिस विच भूख बहुत नैसान पौ खाना पीना आधार विण खादे मर होए गवार।

गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एहो विशेख। कहना है किश कहन ना जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए। रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे, करनी कामण कर मन लए। साहा संयोग वियाह वियोग, सच संतत

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पट पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओहो ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर।

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली। बाजी यो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े। बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया। हालत

ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जे शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हाँ मैं विच गावै बिरथा जाए, गावन गावै जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रह जे सतगुर पावै। मंतन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे दे वड्याई। गुरप्रसाद हर वसै मन आई रहाओ। गुरम करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै। मन मैं मत मैंगल मिकदारा, गुर अंक समार जीवालन हारा। मन या साध साधे जन कोए, अचर चरै ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हम मैं विचों तजे विकार। जो तुर राखिया नु मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मत उत्तम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

गुरमुख नाम निधान लै दरगह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आ पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेय पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मिलाइय रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आई है वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईऐ हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

जब गुर मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पगतूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजा शब्दा नहद गुरमत मनुआ गावै वड़भागी गुर दर्शन पाया तन धन गुरु लिवलावै गुरमुख हर लिवलावै रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावै हम मलमल तोवै पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमत राम रसायण जेवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रसिया गाने फिर बहुर ना पूख लगावै कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम ना पावै जन नानक कहो हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रमा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड़भागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुरकर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठ टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वड़भागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेख हर आपे कर लाया जियो एक खावे बख्स तोट ना आवै एक ना फुका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वड़भागी नाम समाही जियो नैणी मेरे प्यारिया नैणी मेरे गोविंदा किने हर प्रब डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा
ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜੀਓ। ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੜਿਆ।

सगल कडाके अंतरजामी, सर्व सुखा सुख साचा एहो, गुर उपदेश मन मै ले हो। जा कहो राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो धन वड भागी। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवां।

हर हर नाम जपत जंतारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहूं लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित तित लगना, अपना भला सब का हूं मंगना। सब किस तेरा तू करना हार, अंत नाही किस पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से आन पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उल्ला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन नाया गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक है जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच बखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सत धर्मा, सर्व निधान।

मान कर जाता। गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पंजवा आन रसा जेते तै चाखे निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो चाखत होए रहे बिस्मादो अमृत रसना पियो प्यारी एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कत हूं जाइए साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद इहां उहां सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे एह रस राती बहोर ना छोड़े आन ना रस कस लवे ना लाई कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इस ही मदे बस्त्या पार इस ही पीतर सु

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साज दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गावन हर कै दर्शन। हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार। एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन निरंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते। दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का हुए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, अगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनि तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ। व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्याप माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकट ना आवे माई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना पाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पान, संतन तूर सर्व निदान, सावत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। जां कै वस खान सुल्तान, जां कै वस है सगल जहान, जां का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जां का दरबार, सगल भगत जां का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा ढहै, जिस सिमरत जम किशु ना कहै, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ तह मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मै राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्याव, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी, जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ। सहज सुखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्थ बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोला वै राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै कले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावै कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ जिस होए दयाल तस्याप मिलावै सर्वन दान गुरु ते पावै आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जन उपर प्रपय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वन दान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म से लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरे मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तेरा जन सोए जा कह कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पाओ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सरवण दान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निदान हर लख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिलै वड्याई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रवचित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पाओ काहे का माने हर बिसर तो काहे सुख जाने रहाओ जिन तारे बहु तरनिया गास जाकी जोत जी प्रगास जाकी बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपा होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरनी पाहे कोट कलंक खिर

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा गुर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरै प्रभाणी पूरे गुर की समत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए घर बाहर सुख सह सुबाए रहाओ सोई पछाता जनय उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बह पकड़ो लीनो करे अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुनै चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तर पायो हर रंग दुत्तर तरे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खट्यो जाका नाहे सुमार जिसै प्राप्त तिस गुरदे नानक बिरथा कोय नाहे गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा हस पुनीत होए तत्काल बिरस जाए माया जंजाल रसना रमो राम गुण नीत सुख पावो मेरे पाई मीत लिख लेखण कागद मसवाणी राम नाम हर अमृत बाणी रहाओ ए कार्य तेरे जाहे बेकार सिमरत राम नाही जम मार धर्म राय के दूत ना जो है माया मगन न कछु है मोह है उदरै आप तरै संसार राम नाम जप एकंकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाकै माथा एहो निधान सोई पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हों तिस बल जाओ राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है के है जो बिबर्जित तिस्यो ने है रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा कल जुग में मिले आए संजोग जिचर आ गया तिचर पोगे भोग जलै ना पाई है राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए प्रे संग ना पावे बहुजोन पवाइए सील संजम प्रयाया गया मन तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जाने तन सती दरगे परवाने गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा हाव तन मन तो पाक सच नाए हर गुण गावे सही सुभाए रहाओ पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पया निधाना अर्तन लाल जाका कछु ना मोल परे पंडारा खूटा तोल खावे खर्चे रल मिल पाई तोट ना आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए गौड़ी महला पंजवा डर डर

हमारा अंतर्यामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जा को तुम दीनी प्रभ धीर, ताकै निकटन आवै पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर न जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमहे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई का को बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संयोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे हो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा। वड्डे वड्डे जोधि सै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक्यो तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा। पूरा मार्ग पूरा इसनान, सब कुछ पूरा हृदय इनाम। पूरी रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राजयोग। हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक। करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट। संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। रहाओ संत का संग मिटया हंकार, दृष्टया वै सब एक अंकार। संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा। कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमरत त्रास सबनास है। सा मत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डे पाक साधु संग पावै। रहाओ साध संग पाईए निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा। हर की भगत

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुरु गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिनस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै, गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जप हर नाओ रहाओ, सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरे हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कार सो, चरण पुनीत चले हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा।

मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अनकोए, मारा राखै को सोए रहाओ। गुर के चरण हृदय उरतार, अग्न सागर जप उतरै पार। गुर मूर्त स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान। सगल त्याग गुरसरनी आया, मिटया देसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवां, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ। इकस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन मैं लेख। रव रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवां, पै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम आधारा। पौ ना व्या

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते परम पौ भागे। पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी, सगल कटा के अंतरजामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बेगानी। रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग, परत बिहून कहां सोहाग। नाम बिसार लगे अनसवाए, ताकि आसना पूजे काए। कर कृपा प्रभ अपनी दात, नानक नाम जपै दिन रात। गौड़ी महला पंजवा, तू समर्थ तू है मेरा स्वामी, सब किश तुम ते तू अंतरजामी। पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उधरै जन कोट। रहाओ जेते जी ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख नेरे। जो किश वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा। कर कृपा दीजै प्रभदान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जा की राम नाम लिव लागी। जा कै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही। रहाओ सर्व निधान राखे जन माहे, ताकै संग किलविख दुख जाए। जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रया समाए। कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै, दास की तूर नानक कौ दीजै। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसै मन आए। पज मन मेरे को नाम, जी तेरे कह आवै काम। रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता। छोड़ उपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख। बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौन दर करे। गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सदगुर मिल सतारे।

चरण कमल हृदय उरधारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी। सफल जन्म होवे प्रमाण, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। संत धूर पाई एवड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा, करै दोह कर्म दिखावै होर, राम की दरगह बांधा चोर। राम रमै सोई रामाणा, जलथल महियल एक समाणा रहाओ। अंतर बेख मुखे अमृत सुनावै, जंपर बांधा चोटा खावै। अनक पड़दे मैं कमावै वेकार, खिन मैं प्रगट होए संसार। अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता। गौड़ी महला पंजवा, राम रंग।

गुर रंगे से पय निहाल, कहो नानक गुर पय है दयाल। गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विखनासे, सुख सहज आनंद निवासे। राम जना कहो राम भरोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। रहाओ साध संग।

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर तन को वा पारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सात आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत संभट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध के संग किलबिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहन खाए, तिस्यो आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन

साधु संग करो सबको ए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रांबिन से गाय गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाका सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभु दय निवास।

हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबिख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवां।

गौड़ी महला पंजवां नित प्रत नावन राम सर की जय। चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ। निर्मल उदक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तै गोष्ट होए, कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद, मंतन रविया परमानंद। जिसै प्राप्त हर चरण निधान, नानक दास तिसै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां, सो किछ कर जित मैल ना लागै। हर कीर्तन में एहो मन जागै, रहाओ एको सिम।

पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ। अहम बुद्ध मन पूर्थ दाई, साध तूर कर शुद्ध मंजाई। अनक जला जे तो वै देही, मैल ना उतरै शुद्ध ना देही। सतगुर भेटियो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पहु काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया तुम परगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार पुरानी, रहाओ। आठ पहर त्याई गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांत पई गुरु गोविंद पाई। ता पाप बिन से मेरे भाई, रहाओ। राम नाम।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ, सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा। तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईए, रसना राम नाम जस कहिए रहाओ, तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवा। तू है मसलत तू है नाल, तू है राखै सार समाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई रहाओ, आगे आप इहो थान वस जाकै, आठ पैर मन हर को जापै, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करै फुरमान, आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा। सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ, कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा। तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त ना पाईए, मुक्त पदार्थ नाम त्याईए रहाओ, पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवै हथ दाना, बेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी, कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म बीचारै। गौड़ी महला पंजवा। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे का सवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल की नो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा। हर संग राते पाहे ना जलै, हर संग राते माया नहीं छलै, हर संग राते नहीं डूबै जलाओ, हर संग राते सफल फलाओ, सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख ना लागै, हर संग राता अंदन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते परम पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा। उद्यम करत शीतल मन भय, मार्ग चलत सगल दो गए, नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए,
आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्या पारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानको प्रभ कृपा तहरे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदय बसाया। गुर गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे अराध मेरा मन धीरा। रहाओ आन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवकी आपै ज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरै सब कोए। करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करने हारा। पै बिरसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे। जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई। नानक दास दा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा। दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूर्ण पाई। ताते बिरथा ना ब्यापै काई, रहाओ जो जो चितवै दास हर माई। सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रपत गवाई। नानक हर गुण निरपौ गाई, गौड़ी महला पंजवा। पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गै लेहो अंगुरिया। रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अहट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै, सर्व कल्याण सुख सच पावै। रहाओ बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले कहूं एक लिव लागी। जिन हर पाया सेवट भागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहै। जोगी जति सिद्ध हरिया है, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै। तां की शरण जिन बिसरत नाही, वड़ भागी हर संत मिलाही। जन मरण ते मूले नाही,
कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे, बिनो सुनो प्रभु ऊचिया पारे, नानक मांगत नाम आधारे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे। पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिण सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो दास दासन की अनक पान तिस करो निहोरा तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज पया प्रभ खिन मैं नाठा मिल ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो नाव निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठ जायो एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मिलायो गौड़ी महला पंजवा औध कटै दिन सुरै नारे मन गुरमिल का सवारे रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिधाते सरदा मन की पूरे नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण।

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुखदाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हमें मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा यवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलो है मूड नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन धर संग रूलिया।

हर नाम नो सागर लहर संसा संसार गुर बोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया गुर भेट परंपो खोया कहो नानक एक ते आया कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभु के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा। जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है वड्डे पाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है या गै तिल नहीं मानी है। अहु बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोबन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी। इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तू ही तान। गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधिय संत संग हर मन वसै परमोह पौसा दिए रहाओ। वेद प्राण सिमरत बने सब ऊच बरायत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिरै गोविंद लोक नहीं जन्म मरै बल बुद्ध सियान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइयै नीत नीत हर सेवियै सास सास हर त्याइयै रहाओ। संत संग हर मन वसै दुख दर्दा नेरा प्रम नसै संत प्रसाद हर जापियै सो जन दुख ना व्यापियै। जां कौ गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्न ते नानक कौ प्रमया कर मेरे मंत्र वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा रसना जपियै एक नाम इहां सुख आनंद कना आगे जी कै संग काम रहाओ। कटियै तेरा अहंग रोग तू गुर प्रसाद कर राजयोग। हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बौर न कत ही ताया। हर हर नाम जा को गुर दिया नानक ता का पौ गया। गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरै राम नाम ताहू को पीर साध संत मिल हर रवै से गुणी गहीर रहाओ। जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निद सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किश नाही ता कै कमी। करने हर पिछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर तन जा कै गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ। बेबरजित बेद संतना उवाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो। हरन परन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग किरपा निद मैं दितनो। गौड़ी महला पंजवा मोहे

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सोलो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रमतो प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्मो, जाके सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मानो नाम ले, जम बनते छूटे। सर्व सुखा सुख पाई है, सेव स्वामी सतगुर दाता। मन वंचित फल आई है, नाम इष्ट मीत सुत करता। मन

ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केलो अनंद खेलो रहे फेरो पै मेल नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयानु रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ तौ लो दुखन परे जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हो किए ते बंद परे जौ साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए जौ लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना, जन नानक हो खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई। रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसे सो सगल बिनासे, ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को, हर जस मन नहीं आवे। अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यों झूठो एहो जागो, देखता से उठतावे। भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को, भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो, एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सबको हिरलीना, तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो, तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, तासो नेहो ना लावै, नानक मुक्ता ही तुम मानो, जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा, साधो राम सरन बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर्पै सा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन, तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यों, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहें तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोह धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै, कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला, गौड़ी गुआरेरी एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिखठाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जागया। शब्द रवै मन हास्यो लागया, रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया, साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यों राता हुक्म अपारा, जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या पोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखो कैसा सागर डूगर निरपो वैसा मुवे कहो कहो मारे कौन निडरे कहो कैसा डर कवन शब्द पछाने तिन्ने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बुझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रया समाई निज कर ब्याप रया निठाई औसत कर है केते मुन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआरे री महला पहला ना मन मरे ना कार्ज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन माने गुरते एक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आप निवार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बहुचते विकार मन भूलो सिर आवे भार मन माने हर एक अंकार मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्ध रह ना ठाए हर पज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर कंचन सुतनारी बहु चिंता पड़ चल हारी जुए खेलन काची सारी संपो संची पए विकार हरक सोक उबे दरबार सुख सहजे जपरद मुरार नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नाम सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल तावत फुन तावे साचे सूचे मैल न पावे नानक हर गुण गावे गौड़ी गुआरे री महला पहला हौ मैं करत्या न सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहने बिरथा जाए गुरमुख दिसै सह सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ तर्पण धारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवै, बिन गुरे अंत ना पाए अपेवै, आप लाए आपे मत देवै, दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी,

हरनाग चले नखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे, रगत बीज काल ने बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दै संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जान्या करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहराओ

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सा

तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै, वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा कल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ, माया मोहे देवी सब देवा। काल ना छोड़ै बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी लाख्या पेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूलै जमका दुख सहना। मैं तर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम। साह मरै संचय माया दाम, मैं तन दीजै हरि अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसै संसार। अफर्यो काल कूड़ सिर मारै, निश्चल एक सच्चा सज सोई। जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा। काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जिहवा यार नैनी। कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन सबदै मूठै दिन रैनी। हृदय साच वस्या हर नाए, काल ना जोहे सकै गुण गाए। नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला। बोलै साच मिथ्या नहीं राई, चालै गुरमुख हुक्म रजाई। रह अतीत सच्चे सरनाई, सच कर बैसै काल ना जो है। मनमुख कौ आवत जावत दुख मोहै। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रहियै। निज कर बैस सहज कर लहियै, हर रस माते ओ सुख कहियै। गुरमत चालो निश्चल नहीं डोलै, गुरमत साच सहज हर बोलै। पीवै अमृत तत् विरोलै, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्रह्मणी। इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निहचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम

गुरमत नाम ना विसरै, सहजे पद पाईऐ, अंतर सब निधान है, मिले आप गवाईऐ। नदर करे प्रवे अपनी, गुण अंक समावै, नानक मेल ना चूकई, लाहा सच पावै। गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझले तौ होए नबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द ना छूटिया देखो विचारा, जेला कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यो कहिया, बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद नर बहिया। खोटे को खरा कह खरे सार ना जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल विडाने। सूते कौ जागत कह जागत कौ सूता, जीवत कौ मुआ कह मुए नहीं रोता। आवत कौ जात

चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरुलिये मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीना आप कहो सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिया सब ब्रह्म समाया। अरा गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदियां, एको अंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमै वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरे न जन्मै काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामै को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उतारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो

आए गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच सोई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार, रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए। हाँ मैं मैला एहो संसारा, नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुआरा, सोजन साचा जे हों मैं मारै, गुर कै शब्द पंच संघारै, आप तरै सगले कुल तारै। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई।

मन करहला सदगुरु पुरख ते आए रहाओ। मन करहला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिया हरे आपे ले छाए। मन करहला अत निर्मला मल लागी हम आए, प्रतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए। मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पल आए, ओ पाए कितना लभई गुर हृदय हर देखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए, कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए। मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आब लया गल।

दूर ना ने रह सब कह संगा सा सालाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते ना मे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसके हृदय रव्या सोए मन तन सीतन निचल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए जास जपत फिर दुख ना लागै जास जपत हम मैं पागै जास जपत वसिया वै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझै जास जपत हर दरगै सजै जास जपत कोट मिटै अपराध जास जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिलै भवन न छोड़ै हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जप सो सहज निवास जास जपते अग्न न पोहत जास जपते काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जप सगला धुलाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जप सुन अनहत तुने जास जपते निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर धारै पंच जना स्यो संग निवारै दस इंद्री कर रखै वास ताके आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ता कै होए जां को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जा कै एक समान जेता बोलन तेता ज्ञान है

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कूकर जूठन मैं पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवे मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना पर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह सुमाए दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कसत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित तन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रैन सुख सुती जियो अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे। आनदिन दुख निवारे अंतर महल पिर रावे, कामन गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहागण गुर कह त्या पारे।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्द अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता आप गुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोष नाही सुखै दाते हम विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हौ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे उच्चे मंदिर महलिया पारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाला पार दयार ठाकरो सदा कीर्तन गावे जै साध संत एकत्र होवे तहां तजै त्यावे कर दया माया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचना नूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एका लेख ठाकर जिने सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया याद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुमारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेड़ ना आवै तो जपै निदाना जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन ध्यावहे मन बचन कर्म जे तो द्यारा दे से सबे फल पावहे मलमूत मूड़ जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगयाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहे अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी महला पंजवां श्लोक पतत असं

शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आराधी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरैण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनिया चिंदिया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुणयानक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्य पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मन उदम करेहा मनाए लै हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया पर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवारै पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाईऐ सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाईऐ काल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिन्हया फल पाईऐ पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम तिहाईऐ सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट भागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह सुवामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंधप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
गुरुदेव नानक हर नमस्कार। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग, नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनत आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखम आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सर

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते जे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना आछ अत प्रे प्रीत साध रज राच तंदे कहां ब्यापै ताहू जो एक छाड़ियन कतै न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख्यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग न हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक कौ आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रवरते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत्युत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुकम बिनास हुकम आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पास अपन हाँ हाँ करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो।

श्लोक राज रहे बनता विनोद कुसम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतु न छूटी है सकते उकमाहे हां हां करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एऊ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे गण

हरारा रंगो या मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। हरे रे दरगह कह ना को, आओ बैठे आदर सुब देऊ। ओआ महली पावे तू बासा, जन्म मरने होए बिनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै सलोक। लालच झूठ बिकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखैर असराते, अहम बुद्ध माया मदमाते। या माया मैं जन्म मरना, ज्यों ज्यों हुक्म ते मैं त्यों करना। को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा। जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकर सदा अलिपना। श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ, गहर गंभीर अथाह। दूसर

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सो जन ना मै राता, जां को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो नाया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोउ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोउ, एक नाम ले मने प्रोउ। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरो तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर ना आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

गंगा ग्रासे काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरणार बिंद ऊंद कवल बिग सात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जे नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार सियान बहु चितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे, टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे, बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कदके, सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन पौड़ी, ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लिपटाही, ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए, ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया, ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया, श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी, डड्डा डेरा यो नहीं जय डेरा तै जान, ओवा डेरा का संजम गुर कै सबद पिछान, ओवा डेरा या डेरा को सरम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै, ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है, डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया, श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न कालियो बंद, नानक उभरे जप हरी साध संग संबंध पौड़ी, टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे, संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए, तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल, सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल, तेरी जामै जा मरै गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे हाहो आवे जाए, टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए, दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए, श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, नाहना तू न छुट निकट न जाइयो दूत पौड़ी, अनाणा रण तेसी जिय आत्म जीतै कोय, हम अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए, मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश, मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस, अणा को जाणै अपनो एकै टेक आधार, रहण दिन सो सिमरत रहै सो प्रभुरख अपार, रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए, हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए, श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे, नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो पौड़ी, तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय, फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए, त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ, गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ, ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज, संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज, ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप, प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप, श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ पौड़ी, थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव, थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार, मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार, थित पावो गोबिंद भजाओ संत की सिखले हो, प्रीत करो सद एक स्यो ऐसा चा स्ने हो, कारण करन करावनो सबदे कै हाथ, जे जित लावो तित लगे नानक जंथया नाथ, श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार, सा सा सिमरत रह।

दें दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास, तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनिया हर हर नाम श्रवण जे सुनिया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निध निदान हर अमृत पूरे तैं बाजे नानक अनहतूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधिए अंत न पारा वार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिटनाई जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिर अवसर चरै ना हाथा नाम जपो तो कटिये फासा, फिर फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे मिल लहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

नानक जाते परै प्राग सलोक मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना भेट साह संगपतियाना दुख सुख उवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहते अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा ओवा रस मैं उवाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया सलोक यार मीत सुन साजना बिन हर छूट नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरनी पाहे पवड़ी।

याय उबरन तारे सबको वाहे जपे बिन उबर ना हो याहु तरन तरन समराथा राख ले हो निर्गुण नरनाथा मान बच करामो जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगट।

जगरहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो उसी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रह तो रह जाए बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हारे औखद सब कट है भाई गुरपूरे बिन बिदना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी वबा वैर न करिए काहू घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रविया गुरप्रसाद विरलै ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहन सगलै ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म तत ना मारा दू रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की लाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत सगत गावारा जे ही है अंबुद्ध बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन भरे अबहारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूल नहारे तुम समराथ्या गंता पारे सरन परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होताहू जो खिनमै उन्ने सुपर भराहू खरा निमाना होत पुरानी अंदर जापै प्रभ निर्बानी भावै खसम ता ओवा सुख देता पार ब्रह्म ऐसोवा गणता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्मना प्रपतियाना सहस भात करै चतराई संग तुहारै एक न जाई सौ सौ जप दिन राती रे जी चलै तुहारै साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक तां को दुख ना व्यापै सरो सलोक हर हर मुख ते बोलना मन उठै सुख होए नानक सब मैं रव रया थान थनंतर सोए पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान होवते आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हाँ छुटकै होए आनंद तेह हाँ नाही तहे आप हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हु किया नानक सब किछ प्रपते हुआ सलोक लेखै कतै ना छूटिया खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्शलै नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुने गार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए लालच झूठ बेकार मोह या संपै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए
ਤੁਦ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ ਸਲੋਕ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅੰਤ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੈ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਘਟਘਟ ਰਿਹਾ ਬਿਆਪ ਸਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਪੈ ਭਰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ

पुड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जां कै सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे हैपी हो बनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हों दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरव सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरव जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जने आप सिमराए, नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंत, प्रभ को सिमरै से पतवंत। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कौ ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाए आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौं मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै।
ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर पूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया उटरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जे प्रसाद सुख से सुई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे, नानक पास सेती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग ना ही हवताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग मैल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक प्रहरै।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा।

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नान

ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सज जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै,

के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रवृचि बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेगे आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरे, कई कोट पर दुख ना।

होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारा एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीव, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन को सास सास समारे नानको परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योतिष पावे सोई होग, खिन मैं थापो थप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार।

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव की इंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से। ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच उतिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग। नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभ नासी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख समाए समाणी। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाय तिसै सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दै प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करना हार, अवरना बुझ करत विचार। करते की मितना जाने किया, नानक ज्योत पावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझया तिस आया स्वाद। प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काट नहार, जा कै संग तरै संसार। जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत आवनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करण करावन तिन मूल पछान्या। जा कर दै विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ता को पेना कहना जाई। बूझै बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी। ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकर कौ सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै।
अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत अपने सेवक की आपत रख ताकि गतमत कोई ना लख प्रभ के सेवकों को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल रख भस्म करे लश्कर कोट लख जिसका सासना काटते आप ताको राख्त देकर हाथ मानस जतन करत बहु पात तिसके करतब बिरथे जात मारे ना राख अवर ना कोए सर्ब जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रभ लख विडानी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके शवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र बताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोबत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिह बादन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्योरै सुआए जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखाना तिसका गुण कह एक न जाना आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले हे मन तन अपना तिन जन दे हे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर सियाणप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका ना तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेव कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख कौ नाम धन दे गुर का सिख वट पागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमार है गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस कहो कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए निकामी तिसका होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस सियाणप लया ना जाई है नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करने गाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जेहबा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत कने ना पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सतबलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮੋ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਦੇਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੋਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਉ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ,
गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसे सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, शाड़ सियानप सगली मना, सास संग पावे सज तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहे प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम, साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम ते आवो, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग, वडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नोसदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी, जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख, गुर प्रसाद को बिरला लाख, सो क्यों बिसरे जे बिखते काड, जन्म जन्म का टूटा गांड, गुरपुरे तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो सर्व कटा करत प्रतपालो आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकारे हो कछ ना दृटेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किस भूख कवन त्रिपतावै करण करावण करण हार नानक करते का नहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाल अशेदा भेद समाया ऊहा किसै व्याप्त माया आपस कौ आपया देश तेह गुण का नाही परवेश जय एक एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप पतियारा तै कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कौ आपै पहुचा जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण मैं कीनो विस्तार पाप पुनते पई कहावत कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तौ नानक एक जह

जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपा।

साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जां कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण तां का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत तां की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताँ की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए वेद प्राण सिमरत सुने बहुबिद करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता पुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोबिंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए सा

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मंतन बसै तज काम क्रो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहौ करत विहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस।

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र तासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस भुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पत्तो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सम प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तैं बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रव्याप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जा का हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जा का होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुखी उजला नै पो है तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन भजया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदरै सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रभ अपना नानक तसैरवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनों समत सब कोए एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावै कोए महला चौथा हम है माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हम मैं मैल बिख उतर हर अमृत हर और तार सब कार्य तिन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आईंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई गुरमुखा नु फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई सलोक महला चौथा विण नावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवै लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया सलोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मन तन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरनांगति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख या गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वरतदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़ी है तू करै सो सच्चे होए सी तां कायत कड़ी है सलोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगान जन नानक कृपा धार प्रभ सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत परम की ज्यो बोलन तवै सोहन नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत परन पौड़ी तू करता आपा पुल है पुलन विच नाही तू करै सो सच्चे भला है गुरशब्द बुझाही तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद ते आही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छडाही सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेश राय अखी तार लगन गुर तुठै सज्जन मिलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा
सतगुर दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखै ब्रह्म एक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे, तिन विचों तिष्टिया ना कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब के जानदा, जिद्दू किश कुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड़ जानी। जे साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी। जे कोई उस दी रीस करे, सो मूढ़िया जानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै, गुण आख वखाणी। नानक सच्चा सच है, बो सच समाणी। सलोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निरवैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखण हार। धन धन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया, जिन जपया सृजनहार। महला चौथा। आपे धरती साजिया नु, आपे आकाश। विच आपे जन तो पाया न, मुख आपे दे गिरास। सब आपे आवरदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ते आए तू, सब किलवे कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ न आवै। तिन के मुख दर उजले, जिन हर हिरदय सच्चा भावै। कूड़ यार पिशाहा सटियन, कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै। मोह काले कूड़ यारियां, कूड़ यार कूड़ो हो जावै। सलोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगह सच्ची पैन आए। एक ना अंदर खोट, नित खोट कमावै। ओहो जेहा बीजे, तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखै, सुभाव गीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवै नित, तेहा पायन। ओए तेहो जेहे दईये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा। एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरिया, जे घर हथ होवै साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवै, हंकार ना विचों जाए। हंकारिया नो दुख भुख है, हथ तड़ै कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै, मुलम्मा पाज लै जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, ते सतगुर मिले प्रभ आए। जो लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यो पावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो वंदन हर हर नाम ते आवै। हर हर नाम रमत सो संजम, हर नाम में ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबान, हर नामो रख करावै। जो चित लाए पूजे गुरमूर्त, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार देवावै। फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै।
नरक कोर मोह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे। फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जा हर हर नाम ते आवे। हर बाता आख सुनाए नानक हर करते ए वै भावे। महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्ने ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया। उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया। ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै ना पाया। ओह कर कर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया। गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया। जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया। पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपर आया। गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा। सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके। ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके। सलूक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया। गुरमुख बख्श जमाइयां नो मन मुखी मूल गवाया। सब को बीजे अपने भले नो हर भावै सो खेत जमाया। गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करतै मार कढ़ाया। किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया। तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया। जन नानक नाम आरा दिया आप तरिया सब

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथा निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कल युग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए, महला चौथा हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा जे होंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठ के आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त माले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछे तर गया, जन लोहा काट संगोया, जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वडभागिया सोहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेव कड्डे खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया एको ओत पोत, एक देखिया एक मन्या, एको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन के हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे, हर दरगह ते मुखी उजले, तिन कौ सब देखन जाए। जिन निरपो नाम ते आया, तिन कौ पौ कोई नाहे, हर उत्तम किनी सरेविया, जिन कौ तुर लिखिया आहे, ते हर दरगह पहनाई है, जिन हर वुठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटुंब सियो, दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे, जन नानक कौ हर मेल जन तिन।

कूड़ ठगी गुजी ना रह, कूड़ मलम्मा प्लेट तरे हो, कूड़ी करन वड़े आईया, कूड़े स्यों लगाने हो। नानक सच्चा आप है, आपे नजर करे महला चौथा, सत संगत में हर उस्त है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करे पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण कौ सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया। तुध आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुध सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर कौ सिरजनहारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अगे पिछे टोई नाही, गुरसिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उभरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हाँ मैं जगत भुलाया, दुरमत बिखिया बेकार, सतगुर मिले ता नजर होए, मनमुख अंध अंधार। नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर भिजे, जिन्नी एक मन एक यारा दिया, तिनका कंध न कभू छिजे। धन धन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन भावदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। सलोक महला चौथा, सागत जाए निवै गुरिया गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे, जां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाए कुसर बगलारे। गुरसिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कड्डे लद्दो वारे, ओए अगे पिछे बह मोश पाए, नो ना रलनी खोटे आरे। ओना दा पक्षो उथै नाही, जाए कूड़ लहन पे डारे, जे सख्त नरखा वाई है लोचिया, बिकड़े मुख उगलारे। हर सागत सेती संग न करियो, ओए मारे सिरजनहारे। जिसका हो खेल सोई कर वेखै, जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुर पुरखिया गम है, जिस अंदर हर उर तारिया, सतगुरु नु अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजनहारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया, सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब यो बारिया। जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आपो पावन हार है मारिया। ए गल होवे हर दर गै सच्चे की, जन नानक अग विचारिया। पौड़ी सच सुतिया जिन्या राधिया, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग मैं जानी है।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान, दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूम न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारियां नू।

गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात कहू स्यो नाही। पत या पत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्ब त्याग भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगर फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ। मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ ना गई आकाई। बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात इशनान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बवागर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महा।

कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्ट तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उट हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदै स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो रहाओ। साहन सत करै जी अपने, सोर मैये को मिले न सुपने। तन मन धन गृहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमारों। कहत कबीर पले असवारा, बेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम रा

काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, नामै जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुनो।

और आ गौड़ी ग्वालेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगिया पावै। बिखिया जो सुरत सुखयासा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते इस ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तिन साच पिछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन पए सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन का ओ रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारेरी अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कहे कबीर राम नाम पिछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर तज कत काहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरण है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको पहे राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पांच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जानै, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तनै ना होई। गौड़ी झगड़ा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सो काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सो मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास।

जीवत पितर ना माने को मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे कौआ कुकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसै कुशल पी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कहिए अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे अंतकाल का उपारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया। अंजन माह निरंजन रही है बौना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ असर रखो। इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी निचल शिव कर बासा। तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है एह जग बेदया भाई। दैद सिर बूंदी पवन चुलावै डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे उल्टत पवन चक्र खट भेदे। सुरत सुन अनुरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अगल पई अवरै ना तर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै जिन जैसा कर मान्या। अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिए ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया तै उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाध दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही रात दिन सतै नाही। जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है। कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सतसंगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे पवन पूंजी परगासे हो। तृष्णा गूण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे हो। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध द्वे पहे जगाती मन तरंग बटवारा। पंच तत् मिल दान निबेरे टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सनोरे संतो अब ऐसी बन आई। घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है साहुरड़ै जाना। अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना। कहो डडिया

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली, चित बंद ना।

की चरनी लाग रहो पाए सरन कबीरा गौड़ी। जोगी कहे जोग पल मीठा अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटका वनो ते बांधे बहु फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बढ़ ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद मान कलही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहार उसका अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग हुए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही परजान ओ तो उसका अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मंड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज अकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन सिर अढ़ाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतनी निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहार बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संयोग। लोग जाने

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहि बिचारे ओरे उन्मत मान हिरे मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मुकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबन अरसत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिन सजाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावे ता हुक्म नावे इस बेड़े को पार लंगावे गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारिंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਗਾਓ। ਰਹਾਓ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ, ਲਖ ਚੌ ਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਰਹਾਓ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜਿਹ ਕਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੇਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈ ਸੋਇਓ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਰਹਾਓ, ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ, ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਾਓ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ, ਹਰ ਕੀ ਪਦ ਕਰੀ ਜੈ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ। ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ, ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ। ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡ ਭਾਗੋ, ਰਹਾਓ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗ ਧਾਰ, ਮੋਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ, ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ, ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारहवीं मन रे छड़ो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा से

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हित अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापो रे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौकर देख

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना, कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन अखरी कबीर जियो की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

तै मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग अशेद। तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कत ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै। चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नया निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा पायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कत ना जावा। रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और हो भागे। टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंत्र भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा। ससा सो सहसे सवार, सोई सही संदे निवार, अल्प सुख शाड़।

है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अनपै रह। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जां कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। सलोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत निजसार।

परवा प्रीतम करो बिचारो, घट मैं खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रहे समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिसताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगै रहो कर्म धर्म की सूल ना सहो सातै समकर बाचा जान सातै सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटै संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निदराया गुरगम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवे द्वार कहो साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर मैं रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मैं वाए सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत घर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुधा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ लो महल न लाबै जान रमत राम स्यो लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारी अले राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी अले चरण बद्धक जन तेउ मुक्त भय हाँ बल बल जिन राम कहे दासी सोत जन बिदर सुदामा

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रमफास, प्रेम

अकाल मूर्त वजूनी से पंगुर प्रसाद। राग आसा महला पहला, कर पहला सोदर तेरा केहा, सो कर केहा जित पै सर्व समाले। वाजे तेरे नादा ने का संखा, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परिसो कही है, केते तेरे गावण हारे। गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावन तुदनो से समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर, जुग जुग बेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मश पयाले। गावन तुदनो रतने उपाय तेरे, जेते अठसठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबर सूरा, गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चितना आवन, नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सा साहेब, साचा साची नाई। हैपी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता अपना, ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष पावे सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पत साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला चौथा। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमया पारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख सुवाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिने अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त पै जन हर त्याया जीओ, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जीओ, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जीओ, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनका ने कानंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड्यावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सिरहिट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला पहला, चौपदे कर दूजा।
ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਟ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਤਿਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਓ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ।

जो जन्मे से रोग व्यापे हम मैं माया दुख संतापे से जन बांचे जो प्रभ राखे सतगुर सेव अमृत रस चाखे चल तो मन राख अमृत चाख है सतगुर सेव अमृत शब्द भाख है साचै शब्द मुक्त गत पाए नानक विचों आप गवाए आसा महला पहला जो तिन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया हिरदय नाम नाही मन भंग अंध नाल प्यारे संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ कर्म धर्म।

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा।

नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै। आसा महला पहला पंचपदे। दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही। रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वा फल लागै। अखर बिरख बाग पोए चोखी, सिंचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही। जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही। दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही। कह नानक जीवा ले जिया, जय पावै तै राख तुही। आसा महला पहला। काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती। हर नामा जा जाचो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सुच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल। एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल। चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै। तिलकल लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक। आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहो भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई। जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास। सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिल ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीतना यवर कोई, जो तू राखे तिवही रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरण पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखे ना पवै ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जायनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सनाहे आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहै जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल से ती थिर न रहै।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे ना अवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

भगत रता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुख रुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर भज मेरे मानो हर जप सदा ते आए, सदा आनंद होवै दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखै सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्से बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर

आए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जमन मरना है संसार मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनों कृपा करे तिस सत्संग मिलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सहना।

गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा रहाओ, हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हूण माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मस्त तत कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा रहाओ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड़ नंगा, पच पच मोए बिख दे।

खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोवो हर सिंचव गुरमत जेहत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हौं तब लग सुमारो नाम मेरे मन ऐसी भगत बने आई हौं हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए नानक आखना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग यासा कर अठवां राग यासा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तो राहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुए खेलन जग के हो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सचे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सचे सचियार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है अंतर वस्जा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है राग आसावरी कर सोलवे के दो महला चौथा सुधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौं आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हौं हर बिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हौं हर बिन रह ना सकूं हौं एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई
हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बै राग बिरगत पायो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई। जन नानक कै मन अनद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे। ऐसा देख बिमोहत होए, साधक सिद्ध सुरदे मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ। एक फिरे उदासी तिन काम वे आपे, एक संचय गृही तिन होए ना आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तप करते तपसी पूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कह है सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा, ससू ते

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

जो तू करे सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सदही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोमन हारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दासरे

वे मोहताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर छोड़ होशै रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनेशा दियो प्राणी, तेस्यों लूक जो सद ही संगी, कामना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावे त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवां, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावे हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवां, आनंद बिनोद परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निधान।

और आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महा बचित्र सुन।

का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने। संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु। नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावै सो परवाना। सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा। अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावै। मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावै रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। तृप्त अगाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जां कौ टेक तुम्हारी स्वामी, तां कौ नाही चिंता। जां कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया। वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई। अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई। जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया। पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा। तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत हूं नाही, खसमै एवे भाणा। जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई। कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला। दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया। आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा। वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने। वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया। अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले। सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल। नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखै। मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावै। रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै। राम नाम जप हृदय जापै, मुक्ते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै। मन तन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे। ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇਹਰ, ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ, ਰਹਾਓ ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ।

मैं सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड्याई ता तेरी वड्याई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काट्या रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपौ पहे सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भख है। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुदया गै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सा संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जापे अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जन्म उते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणे।

रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो री। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास धरी तिन माया।

हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वसे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई है एहो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला वर्यंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है। हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन ए तुत कत न डोले। कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए। आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए। हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै। अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया। तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे। तिसको चिंता सुपने नाहें,

वर्तन जाकै केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जानै। कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास, आसा महला पंजवा। सगल सुख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साधका संग, जिस भेड़त लागै प्रभ रंग, गुरप्रसाद ओ आनंद पावै, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावै रहाओ। वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकी पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकी गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा। आठ पहर उद किस नानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही, बहुर बहुर तिस लागै पाई, साल ग्राम हमारे।

जह लालच जागाती घाट, दूर रही ओ जनते बाट। जह आवटे बहुत घन साथ, पार ब्रह्म के संगी साध। चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा। कौ नानक जे सतगुर पूरा, वाजे ताके अरहद तूरा। आसा महला पंजवा दो पदा, साधु संग सिखायो नाम। सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने। जब जब जीवा सारंग पाने, करण करावन सरन परया। गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ। लाल जवेहर भरे भंडार, तोट ना आवै जप निरंकार। अमृत शब्द पीवै जन कोए, नानक ताकी परम गत होए। आसा कर सतवा महला पंजवा, हर का नाम हृदय नित ध्याई। संगी साथी सगल तराई, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ, तेरा किया मीठा लागै। हर नाम पदार्थ नानक मांगै, आसा महला पंजवा। साधु संगत तरिया संसार, हर का नाम मन आधार। चरण कमल गुरदेव प्यारे, पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ। जा कै मस्तक लिखिया भाग, कहो नानक ता का थिर सोहाग।

तप तहरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मूराखा गुरु नानक बहा।

संत त्रिपतासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुरपूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे पाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया।

जिस मन वसिया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौन ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ जा का दान निखूट नाही भली भांत सब सह समाही जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बनासे सतगुर की शरणाई रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी सब

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटै महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख अपार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वंजा कुर्बान साई अपने, होवै अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से, जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराध संभाले साह साह, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए एक साहेब सिर छत दूजा नाहे कोए। ज्यो पावे त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रव आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरिया, नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार, गाफल गह लिया कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया। बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगिया, आठ पहर गुण गाए साधु संगिया रहाओ। भोगै भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे, देख तुम्हारा

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिया थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ा।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरे चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे।

पंजवा ठाकर चरण सुभावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा या ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते अवर दे बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आई है सर फल पाई है सगले दुख जाही जियन को दाता पुरख विदाता नानक कटकट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवै सर फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ कहो नानक जे सतगुर भेटिया सो जन ने चलथिया आसा महला पंजवा कर चौ दवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ जो प्रभ पावै जन्म ना आवै हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मिली जय हो मन दी जय नानक नाम मिलै अपनी दया करहो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध सरण प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिकार माया माद सोयो सूई बूझ ना आवै पगर केस जम उठारियो तद ही कर जावै लोभ बिखिया बिखै लागे हिर वित चित दुखाही खिन भंगना कै मान माते असर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै सुनै नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा डान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखै ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान तज सियानप

गुण गोविंद गावो, आंदनो प्रभु आवो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवां। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल दी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ता बौ पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां, आसावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरण पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिया गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अन प्राण हां, रहो सर्व थान हां, लयो जम भयान हां, पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान, लैनो जिसम थान हां, पै पावक पार प्राण हां, निज करत सह थान हां, हर रस रसै मान हां, लाथी तिस पुखान हां, नानक सह समायो रे मना। आसावरी महला पंजवां। हर हर हर गुनी हां, जपिया सह तुनी हां, साधु रसन पनी हां, छूटन बिद सुनी हां, पाइय वडपुनी मेरे मना। रहाओ खोजै जन मुनी हां, सर्व का प्रभ धनी हां, दुलभ कल दुनी हां, दुख बिनासनी हां, प्रपूर्ण आसनी मेरे मना। मन सो सेवी है हां, अलख अपेवी है हां, ता स्यों प्रीत कर हां, बिनस ना जाए मर हां, गुरते जाने हां, नानक मन मान्या मेरे मना। आसावरी महला पंजवां। एका ओट गहो हां, गुर का शब्द कहो हां, आग्या सत सहो हां, मने निदान लहो हां, सुख समाइय मेरे मना। रहाओ जीवत जो मरे हां, दुत्तर सो तरे हां, सब की रेन होए हां, निरपो कहो सोए हां, मिटे अंदेसिया हां, संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां, तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रपाया मेरे मना। आसावरी महला पंजवां। मिल हर जस गाइये हां, परम पद पाइये हां, ओआ रस जो बिदे हां, ता को सगर सिद्धे हां, अन दिन जागया हां, नानक वट भागया मेरे मना। रहाओ संत भगत होइए हां, दुरमत खोइए हां, दस रेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगता शरण पर हां, जन्म ना कदे मर हां, अस्त्र से भय हां, हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां, नाम दृढ़ाए मूह हां, तिस बिन नाहे कोए हां, मने अराध सोए हां, निमख ना विसरै हां, तिस बिन क्यों सरै हां, गुर को कुर्बान जाओ हां, नानक जपे नाओ मेरे मना। आसावरी महला पंजवां। कारण करन तू हां, अवर न सुजै मूह हां, करै सो होइए हां, सह सुख सोइए हां,
तीर्ज मन पए हां, प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ। साधु संग में हां, पूर्ण संज में हां, जब ते छुटे आप हां, तब ते मिटे ताप हां, कृपा धारिया हां, पत रख बनवारिया मेरे मना, एहो सुख जानिया हां, हर करे सो मानिया हां, मंदा नाहे कोय हां, संत की रेन होए हां, आपे जिस रखे हां, हर अमृत सो चखे मेरे मना, जिसका नाहे कोय हां, तिसका प्रभु सोए हां, अंतरगत बुझे हां, सबके सबके शिव तिस सुझे हां, पत तो उधार लेहो हां, नानक अरदास एहो मेरे मना, आसावरी महला पंजवा एक तुका, ओए परदेसिया हां, सुनत संदेसिया हां रहाओ, जा स्यो रच रहे हां, सब को तज गए हां, सुपना ज्यो पए हां, हर नाम जिन लए, हर तज अन लगे हां, जन मैं मर भगे हां, हर हर जन लहे हां, जीवत से रहे हां, जिसे कृपाल होए हां, नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा, बिरथा कहो कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की रहाओ, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की द्वारे द्वार, स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की, मानस जन्म्या कारथ खोवत, लाजना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना सह तन की, राग आसा महला पहला, अष्टपदिया कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर आव घट सरवर नावै, बकै न बोलै हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत झोल महारस पावै, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धारया सब ठावरे रहाओ, सच ब्रत नेम ना काल संतावै, सतगुर शब्द करो जलावै, गगन निवास समाध लगावै, पारस परस परम पद पावै, सच मन कारण तत् बिलोवै, सुबर सरमर मैलन धोवै, जै स्यों राता तै सो होवै, आपे करता करे सो होवै, गुर हिव शीतल अग्न बुझावै, सेवा सुरत पू चढ़ावै, दर्शन आप सहज कर आवै, निर्मल बाणी नाद बजावै, ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मते कै पाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसमर जाए, अवगत नाथ ना लिखिया जाए, जल मैं उपजै जल ते दूर, जल मैं ज्योतरिया भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर, नित गुण गावा देखा दूर, अंतर बाहर अवर ना को, ज्योत पावै सोफन होए, सुन पार्थर नानक कह बिचार, निर्मल नाम मेरा आधार, आसा महला पहला, सब जप सब तप सब जतराई, उजड़ पर मैं राहे ना पाई, बिन बूझे को थाए ना पाई, नाम बिहुने माथे शाई, साच धनी जग आए बिनासा, छूट प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मोहे बांधा बहुती आसा, गुरमती एक पय उदासा, अंतर नाम कमल परगासा, तिनको नाही जमकी त्रासा, जग त्रे जेत कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सदगुर सेवे करनी सारी, बारह मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए, माया मोह गुर सब जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए, तावत रखे ठाकर हाए, सिख संगत कर मिलाए, गुरबिन पूलो आवै जाए, नदर करे संजोग मिलाए,
रूड़ो कहो ना कहया जाई, या कथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सच नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, तर पवन सूजै आप गवावै, बाणी बुझै सच समावै, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन मान्या ऐसा सुरत वखान, कथनी बदनी पड़ पड़ पार, लेखा संखा लेखा पार, ऐसा साचा तू एको जान, जमन मरना हुक्म पछाण, रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल, बांदा छूटै नाम समाल, गुर सुख दाता अवर ना पाल, हालत पालत निभि तुद नाल, शब्द मरै ता एक लिवलाए, अचर चरै ता परम चुकाए, जीवन मुक्त मन ना मसाए, गुरमुख होए ता सच समाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थापो थाप, सर्व निरंतर आपे आप, किसे ना पूछै पूछै बख्से आप, तू पुर सागर मानक हीर, तू निर्मल सचगुणी गहीर।

चारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सब फिरे हंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजे बिन सह पत खोए गुरमुख होवे बूझे सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती तार पाए मिले पावे पैकार नानक नीच कह बिचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिलर होवे हमे जाय शब्द मल धोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन पूजे सगली पत खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवन मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हम बलिहारी सदगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर जोत बिन नामे सूतक जग शोत दुरमत बिन सै क्या कह रोत जन मुवे बिन पग सरोत मुवे कहो सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सोचीत तन मन सौ पाओ कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे पी आपो पाए थापो थाप सृष्टि उपाई ज्योति तू जात।

मूर्ख होए न आखी सूज जेवा रस नहीं कया बूज बेका माता जसो लूज उत्तम संगति उत्तम होवे गुण कौतावे अवगुण धोवे बिन गुर सेवे सहज ना होवे हीरा नाम जिवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परखै नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख मैली मैल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भक्ति विचारी गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ अह निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुक्म पछान साचा हरख नाही ते सोग अमृत ज्ञान मारस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सो होई टाहे ओ सारा हुक्म समावे हुक्मे वरतै जो तिस भावे गुर बिन पूरा कोई ना पावे बालक बिरदना सुरत प्राण पर जोगन बूढ़ा अभमान बिन नामे क्या लैस निदान जिसका अंतन सजना जाना परम भुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे सेवट भागे नानक गुर की चरणी लागे आसा।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाण साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख महला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास केले वेख दो काटे हर नाम परगास। कर बिचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है करे आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेल। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई एहनस निर्मल हर लिवलाई।

पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदरड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया, दरगे पत पाए आसा महला पहला। रूड़ो ठाकर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाइये पग निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, पाणे मन पाईए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। पाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तैं रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावे, पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुख अंद ना चेतई क्यों दर्शन पाए। ता जग आया जानिए लाच साचै लिवलावै, ता जग आया जानिए साचै लिवलाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रहै निराल मो कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला केता आखने आखिए, ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाईए विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा साई, ता कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई, हुक्मर जाई जो चले सो पवे खजाने। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठा ने। नित नित खरा संभालिए सच सबदा पाईए, खोटे नजर नयाब नी ले अगन जलाईए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, अवगुण यारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जत तुपाणिया। जो लग जियो प्राण सच ते आईए, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाईए। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हौ जीवा तुद सा लाहे मैं टेकया धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगह ना महदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावै सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए जो जन राते राम सिंह।

सुंदर सुगड़ सुजान प्रमेरा जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कहन न जाए। साची प्रीत ना टुटे प्यारे जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर जाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सही सुभाए। साबे तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। तदै तार कला जन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिसदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सो हगण भैने, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण काओ परपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यइये जन्म ना होवी कदी, जेकर सच पछाणे। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब यंत्र, जेते किए जनता। जंतो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, भाणै ताकै हुकम पया। ववै वासदेव परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तुसै त्यावो जे अमर होवा। तिसै त्यावो सच समावो, ओ सिविटों कुर्बान किया। हा है होर ना कोई दाता, जियो पाए जिन रिजक दिया। हर नाम ते आवो हर नाम समावो, अंदिन लाहा हर नाम लिया। आयड़ै आप करे जिन छोड़ी, जो किश करना सो कर रहया। करे कराए सबके जाणै, नानक सायर इव कहया। राग आसा महला तीजा पट्टी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो अंगे सब जग आया, काखे कंगे काल पाया। रीरी लल्ली पाप कमाणे, पढ़ अवगण गुण विसरिया। मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रया रहाओ। सिद्धं आया सिमरै नाही, नन्ने ना तुद नाम लया। छज्जै चीजै इन समूड़े, क्यों छूटै जम पाकड़िया। बब्बै बूझै नाही मूड़े, भरम पुले तेरा जन्म गया। अणहोंदा ना उतरायो पादा, अवरी का पार तुद लया। जज्जै जोत हर लई तेरी मूड़े, अंत गया पछतावेंगा। एक शब्द तू चीने नाही, फिर जूनी आवेंगा। तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, अवरानो ना सिखाल बिखिया। पहला फाहा पया पांदे, पिछों दे गल चटड़िया। ससै संजम गयो मूड़े, एक दान तुद कुथाए लया। साई पुत्री जजमान की, सा तेरी एत तान खादे, तेरा जन्म गया। मम्मै मत हिर लई तेरी मूड़े, हमें वड्डा रोग पया। अंतर आत्मै ब्रह्म न चीनिया, माया का मोहताज पया। ककै काम क्रोध परम्यो मूड़े, ममता लागे तू धर विसरिया। पड़ै गुणै तू बहुत पुकारै, विण बूझे तू डूमुआ। तत्तै तामस जल्यो मूड़े, थत्थै थान प्रहट होवा। कगै घर घर फिरै तू मूड़े, ददै दाना तुद लया। पप्पै पार न पवही मूड़े, पर पई तू पलच रहया। सच्चा आप खवायो मूड़े, एहो सिर तेरै लेख पया। पब्बै पवजल डुबो मूड़े, माया विच गलतान पया। गुरप्रसादी एको जाने, एक कड़ी मैं पार पया।
ਵਵੈ ਵਾਰੀ ਆਈਆ ਮੂੜੇ ਵਾਸ ਦਿਓ ਤੁਦ ਵਿਸਰਿਆ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈਸੈ ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪਿਆ ਚੱਜੈ ਕਦੇ ਨਾ ਝੂਰੈ ਮੂੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਾ ਤਦੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰੱਖ ਮੂੜੇ ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਨਿਦਾਨ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਪਿਆ ਗੱਗੈ ਗੋਬਿੰਦ ਚਿਤ ਕਰ ਮੂੜੇ ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਮੂੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਣੈ ਸਭ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਕਥਾ ਬੁਝ ਤੂੰ ਮੂੜੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਮਨਮੁਖ ਪੜੈ ਤੇਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹਰਾਰੈ ਰਾਮ ਚਿਤ ਕਰ ਮੂੜੇ ਹਿਰਦੈ ਜਨ ਕਹਿ ਰਵ ਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਤਿੰਨੀ ਬੂਝ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਥਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ ਰਾਗਿਆ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਪਿਰਲੀ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਧਨ ਪਿਰ ਨਿਹੋ ਕਣਾ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲਾ ਰਾਮ ਧਨ ਪਿਰੈ ਮੇਲਾ ਹੋਏ ਸੁਮਾਮੀ ਆ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗ ਪਿਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਿਆਲ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖ ਵਿਕਸੀ ਮੁੰਦ ਮਾਨਿਓ ਮਾਹੋ ਮੁੰਦ ਸਹਿਜ ਉਸ ਲੁਨੜੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਮ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਤੀ ਹਰ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਸੁਖ ਵਸੈ ਤਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣੈ।

हम कर साचा सोहलड़ा प्रव्यायड़े मिता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दिता राम अपना मन दिया हर वर लिया जो पावै त्यों रावे तन मन प्रया गै शब्द सुभागै कर अमृत फल पावै बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतराईऐ पाए मिले मन पाने नानक ठाकर मीत हमारे हम नाही लोकाने आसा महला पहला अनहदो अनहद बाजै रोण चुनकारे राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारे राम आन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल कर पाया आद पुरख परंपर प्यारा सतगुर लख लखाया आसन बैसन थिर नारायण तित मन राता विचारे नानक नामरते बैरागी अनहद रोण चुनकारे तेते अगम तेते अगम परे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परदाना जाप तप कर कर संजम था कि हठ निगर नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागर रतनागर तित रतन कनेरे राम कर मजनो सत सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल लाए जा प्रपाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिख्या ताजो सच नाम और तारे हम मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुरु गोपाला हाँ बन बनो देख रही तृण देख सवाया राम तेरे पवनो तुझे किया सब जग सवाया राम तेरा सब किया तू थरतिया तो समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन के सालाही अन मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा ना राम नाम बिन मुक्त ना होई नानक कहे विचारा आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारे राम सच साहेबो वाद पुरख परंपरो तारे राम अगमा गोचर अगमा गोचर अप्रिया पारा पार ब्रह्म प्रदानो आज जुगा दी हैपी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण इस नाम ते आई है मेरा मनो मान्या नाम सिखाई राम हम मैं ममता माया संगना जाई राम माता पित पाई सुत चतराई संगना संपै नारे सायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख एक चल दिखाया जै देखा तै सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सोई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साज संभाले राम आवगण मेड़ चले गुण संग मनाले राम आवगण पर हर करनी सारी दर सच्चाई सच्यारो आवन जावन ठाक रहाए गुरमुख तत् विचारो साजन मीत सुजान सखा तू सच मिलै वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन दाता राम मंतन रव रया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हरमन राता सहज मिलै मेलाया साध सवा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर कीर भगत रते बैरागी चूके मोह प्यासा नानक हम मैं मार पतीने विरले दासो दासा राग आसा महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जिथे हों जाई साचा सृजनहार जियो सबना का दाता कर्म विदाता दुख विसारण हार जियो दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कोट अंतर पापा के रे कड़ी में खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा कटकट करे विचार जियो तू सबनी थाई जिथे हों जाई साचा सृजनहार जियो जिन एक मन आया तिन सुख पाया ते वरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबो

जल थल महियर पूर्ण कीड़ हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवां शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खेनो तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मंत्र सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया मिल सखिया पुछै कौ कंतनी साणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुग्यान पूर्ण अपने प्रपाणी बिरवंत नान करंग राती प्रेम सही सुमानी सुख सोहेलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रव्याप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल नित प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवां उठ मंज वटाऊ उड़िया तैं क्या चिर लाया मुहलत पुनड़िया।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौं च आया हौं च गया, हौं में जमया हौं च मुआ, हौं में दिता हौं च लया, हौं

अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाहा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा। नानक जन तो पाए कह संभाले सब नाहा जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सच्चे नाम बिनु क्या टिका क्या तग महला पहला। लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया आवन जान। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेखै एक गल होर हों मैं चखना चाख महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेह किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरै एनस कहरै मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किश थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसान देसे ते नह केवल हमे शब्द जलाए पौड़ी। भगत तेरे मन भाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दर ढो ना लैनी धाम दे कमूल ना बुझन अपना अण होंदा आप गणाए दे हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जित जै त्याए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणा बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला। सच ता पर जानिया जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए। सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रेसिया ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बीओ। सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास। सच सब ना होए दारू पाप कड्डै तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्लै होए। पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिलै ता मस्तक लाइयै कूड़ा लालच छड़ीऐ होए एक मन अलख त्याईऐ फलते वे हो पाईऐ जे वेही कार कमाईऐ जे होवै पूर्व लिखिया ता धूड़ दिना दी पाईऐ मा थोड़ी सेव गवाईऐ। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वरतिया काल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। जे कहोए ता उगवै रुती हूरत होए नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए।
ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸਰਮ ਭਾਉ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀ ਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।

नानक सेवक कंडीय जे सेती खसम समाए पौड़ी नानके अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैसे हों करी पुकार नानक करना जन किया।

चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछु लै ना गयो, आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा, काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर ली।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पए दस बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुर प्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यों भूल नहीं कहिया रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पियाए सत संगत मिल बबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सात स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई।

लंका सा कोट समुंद सी खाई, तेह रावण घर खबर ना पाई। क्या मांगो कि स्थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई रहाओ। एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती। चंद सूरज जाके तपतर सोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामै नाम बसाई, आश्चर रह ना कथू जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा। पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंबो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई रहाओ। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार पैस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत ते सबके सूझे। बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जियो के। ते पदे अठ, दो तुके सत, एक तुका एक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिंद ते जिन पिंड किया। अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया। बहुर लागी माया,

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पै राम प्रसादा, आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देखे, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्म्या लेखे रहाओ, साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यो बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारै काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सतबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। अठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनार हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुलहा हर तन बेड़ी। हर हर तार प्राणा, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नवनिद पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नस, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत संग

मन को एह उपदेश दरड़ावै सह सहज गुण गाई साजन है सो संत सहाई जिस भेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई मिल साधु हर जस गावे नानक भवजल पार पराई गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाए ना करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो तरी त्याई अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खोतार करी गुजरी।

और रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे न सकै मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक और जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता है, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा अब जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है, जाते काल न बिरथी जाइए। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे शरण दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जाको वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेसर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगी

केते उदर भरन कह ताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई, ऐ जी काल सदा सिरी उपर ठांडे, जन्म जन्म वहराई। साचे शब्द रते से बाचे, सतगुर बूझ बुझाई, गुर शरण आई जोहे ना साकै, दूत न सकै संताई, अवगत नाथ।

तो दुरे बिसम भय बिसमाद देह कुदर तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हथ निदान पावे तिस देहे जिसन होए दयालु हर नाम से लेहे आगम्या गोचर बेअंत अंत ना पाई है जिसन होए कृपाल सो नाम तिहाई है। श्लोक महला पंजवा। कड़शिया फिरन स्वाव न जान सुनिया सेई मुख दिसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैं सै दित्ती वाड़ नानक खेतना छिजई पौड़ी आराध्य हो सच्चा सोए सब केशो जिस पास दुहां सरिया खसम आप खिन मैं करे रास त्यागो सगलियो पाप तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिया अमृत नाम बिघन लगे कोए जिसनो आप दयालु तिस मन उठिया पाईयन सब निधान साहेब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करंदो मां पिरी इको सृजनहार नानक ब्याह ना पसीऐ महला पंजवा। पापड़िया पाशाड़ बाण सजावा सन कै गुरमंत्रा चितार नानक दुख ना थी वई पौड़ी वाह वाह सृजनहार पाईयन ठांड आप जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब निवाय थाप आपे लयन छड़ाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा पार खसम जिसले अपना पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जा कौ भय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तन राम सिंह पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो वडभागी हो जल थल मैयल सोए नानक नाम आराध्य बिघन ना लागे कोए पौड़ी भगता का बोलिया प्रवान है दरगे पवे थाए भगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल जिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन एको एक ते आए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते।

तो कड़ी मोहत है विसरा नानक रवि नित पौड़ी सूर बीरवरियाम के ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुर पूरा आराध बिख

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू कमावदे।

प्रभदास का दुख ना खप सकै, फड़ जो नी जुते मथे वाल पछाड़िया नु जा मार्ग मुक्ते, दुख लगै बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखिया नु नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो, जल थल पूर्ण सोए, नानक नाम ते आए बिघन लागे कोए। महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते, जिसनो विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते, ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया, पाया नाम निदान जिसनो पालदा, जोत मिली संग जोत रहया कालदा, सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया, सुध राग गुजरी।

चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नकन टूटे कंधन, कोदव को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया, अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम्बूडो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी अलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुअलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

रहा, प्रेम रसाने जा को उपजी, छोड़ न कत हूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोवत हर हर, हर रस भोजन खाता, अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक, पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा, माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते, मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो, बोजोनी परमाई है। टिकट ना पावै बिन सतसंगत, किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा, साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन पीतर, नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा, ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन कहो बल जाइए, जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया, पय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया, रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी। हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजे, मोए दुष्ट जो खया। पारे उपकारी सर्व सुधारी, सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर तरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ।

तब तुहारे उन सुमार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाऊं साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावा। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावा। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईए। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए। रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कतहू जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचे। प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछे। रहाओ किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गाचे। साध संगत की सरणी परिये चरण रेन मन बांचे। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छे। आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछे। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहू मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुले समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार। मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना सम

मिल साधु संगया गाणे राम, हे रसना जप गोबिंदो मेरी जिंदड़ी है, जप हर हर कृष्णा जाए राम, जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़ी है, तिस मन नाम वसाए राम, जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़ी है, सो हर तानो निध पाए राम, वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़ी है, नानक हर गुण गाए राम, थान थनंतर रव रहया मेरी जिंदड़ी है, पार ब्रह्म प्रभदाता राम, ताका अंत ना पाई है मेरी जिंदड़ी है, पूरन पुरख विधाता राम, सर्व जिया प्रतपालदा मेरी जिंदड़ी है, ज्यो बालक पित माता राम, सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़ी है, जन नानक गुरमुख जाता राम, शका एक बिहागड़ा महला पंजवा, शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर काय का चंभव देखिया मेरे लाल जीओ, जो करे सो धर्म ने आए राम, हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जीओ, आवन जान सवाए राम, आवन ता जाना तिने किया जिन मेदन सिर जिया, एक ना मेल सतगुर महल बुलाए, एक परम पूले फिर दिया, अंत तेरा तू है जाने तू समय रहा समाए, सच कहे नानक सुनो संतो हर वरतै धर्म ने आए, आवो मिलो सहेली हो मेरे लाल जियो, हर हर नाम अरा दे राम, कर सेवै पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जमका मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगह शोभा पाई है, जिनको विधाता तरो लिखिया तिन्ना रहन दिन लिवलाई है, हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिले आसा दे, जन कह नानक मुक्त होवा हर हर नाम आरा दे, कर जोड़ो संते कत्र होए मेरे लाल जियो, अबनासी पुरख पूजे हा राम, बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो, एहो मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन धन सब प्रभु केरा, क्या को पूछड़ावे, जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे, भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा, जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा, दह दिस खोज तहम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायाड़ा कर आए राम, हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमै रया समाए राम, सर्वे समाणा आप स्वामी, गुरमुख प्रगट होया, मिटिया देरा दुख नाठा, आम्यो आरा चोया, जहां देखा तहा स्वामी, पार ब्रह्म सब ठाए, जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पायाड़ा कर आए, राग बिहागड़ा महला पंजवा, अत प्रीतम मन मोहना, कट सोहना प्राण आधारा राम, सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की, अपरिया पारा राम, गोपाल दयाल गोबिंद लालन, मिलो कंत ने माणिया, नैन तरसन दर्स परसन, नै नींद रहन विहानिया, ज्ञान अंजन नाम बिंजन, पय सगल सिंगारा, नानक पयम पै संत जंपै, मेल कंत हमारा, लाख उलाहने मोहे हर जब लगन है मिले राम, मिलन को करो अपाव किश हमारा न चले राम, चल चित बेत्या नित प्रे बिनो कवन विधि ना तीजी है, खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजी है, आसा प्यासी रहन दिन यार रह ना सकिया एक तलै, नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिलै, सेज एक प्रयो संग दर्शना पाई है राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाई है राम, निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइय सहज सोइय।

ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाई है नानक पयंपै संत सरणी मोहे दर्श दिखाई है संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच्छपुनी मन सांत तप्त बुझाया राम सफला सो दिन सरहणे सुहावी अंत मंगल रसकना प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन कवन रसना गुणपना ब्रह्म लोभ मोह बेकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयंपै संत जंपै जिन हर हर संजोग मिलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अंदन नाम वखाणा राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लगे तेरा पाणा राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समराथिया गाथिया पार पूर्ण जियो तन तन तुम मना मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीचे जाना बिनवंत नानक सरण तेरी रख ले ओ आवन जाना साधा सरणी पाईए हर जियो गुण गाव है हर नीता राम तूर भगतन की मंतन लगो हर जियो सब पद पुनीता राम पथता पुनीता होहे तिन संग जिन बिदाता पाया नाम राते जी दाते नित दे चढ़ै सवाया अरिद सिद्ध नवनिध हर जप जिनी आत्म जीता बिनवंत नानक वडभाग पाईऐ साध साजन मीता जिनी सच वणंजिया हर जियो

एक जन एक मन राम के रंग मातिया लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जे नाम पल्ले सही सच्चे साहा नानक सोई सिमरिया हर जियो जा की कल तारी राम गुरमुख मनो न विसरै हर जियो करता पुरख मुरारी राम दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन सांत आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रै निड़िए प्रे प्रेम लगा कर दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महादुरमत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ के चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाने बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराने तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मनता नु रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्तो धारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार किरपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावे संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावे खसम पावे हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधु हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिस ते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया
ਬਾਣ ਤ੍ਰੈਣ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਤਾਣ ਤਨ ਖੀਨ ਪਿਆ ਬਿਨ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੇ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪੋ ਸਵਾਮੀ, ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ, ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तप्त नाकत बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमें सरोवर पियो अमें सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संते संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाय रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदों से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करे सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तप तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पत ते उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पत ते उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला। अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम। सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम, सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइय। भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइय, गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया। बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम, लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने, कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम, आगाध बोध्या पार करते मोहे नीच कछू ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना, त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक सरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी, जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम, गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले, छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया, बिहागड़ा महला पंजवा संत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया, माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले बिना गोविंद नामा, देश वेस स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा, पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी, राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम, माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कट कट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम, सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है, हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने, तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले, रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण पर बीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा, गुरसेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल, गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल, नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल, महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए, नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए, पौड़ी सब तेरी तू सब सदा।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सा लाहे हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदन रह सदा गुण गाए, विणकर मैं कहना ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भिजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जय। आप निर्विरत आप निर्विरती, आपे कथ कथी जय। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जय। आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जय। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, साखसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हम मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जय, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे कल उठ जाए। महला तीजा, एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी, आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जाने। श्लोक मर्दाना पहला, कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी।

संध्या नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार। महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए। पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दस अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया। आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़े खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देह। महला पंजवा घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल। पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए नाम। आप दयाल हुए पौखंडनो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगह पाए मान। जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चित ना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत।

साहिब सदा हजूर है भरमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एओ लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक अथ है सुख है अंदर रखसी अगे हर स्यो केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीता खसम विसरै दरगह मिलै सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जेका पार वसाए नानक नदरी सब सच मद पाई है सतगुर मिलै जिस आए सदा साहेब कै रंग रहै महली पावे थाओ महला तीजा एहो जगत जीवत मरै जां इसनो सोजी होए जां तिन सवालिया तां सब रहिया जगाए तां सिद्ध होए नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मिलै सोए गुर प्रसाद जीवत मरै तां फिर मरण ना होए पौड़ी जिसदा कीता सब किश होवै जिसनो परवाह नाही किसै केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावै सब मोहताजी कढ़ै तेरी जे तुदनो सा लाहे सो सब किश पावै जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साहो सच्चा वणजारा जिन वखर लद्या हर नाम तन तेरी सब तिसै नो सा लाहो संतो जिन दूजे भाव की मार विडारी ढेरी सलोक कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोए ऐसी मरनी जो मरे बौर न मरना होए महला तीजा क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहेब मनो ना विसरे ता सैला मरना होए

अग्गै जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथै कमावै सो मिलै, अग्गै पाए जाए महला तीजा। तुर खसमै का हुकुम पया, विण सतगुर चेत्या न जाए। सतगुर मिलिया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा, आपे कथै ज्ञाना। कौड़ा किसे न लगई, सब नाही पहना। उस्तत बरना सकी सत कुरबाना, सलोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुटी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरा वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर, राज राज जन खाहो। सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म, नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा, सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाना, अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा। सो जोगी जुग सो पाए, जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सब को वसै, पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस कट प्रगट होए पौड़ी।

साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बरहार जाओ। मैं की नजर ना आवही वसै हबियां नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पी तरपाल। नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा ताल है जा सिफत करी अरदास। वडंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे ता भी सहोरावन जाए। मेरा कंत रिसालू की तन्यवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए। मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुला अखां अमड़ी आस तैं सह ना।

माया हाँ कर कर थाका उपाप बहुतेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हाँ क्यों कर पिर कहो मिलो एयानी जो पिर पावे सा सुहागण साई पिर कहो मिले सियाणी रहाओ मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चेतना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभु दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवां, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन कहो जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवां, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेख साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी ऊठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वढ़ंस महला पंजवा, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी सरन पूर्ण कृपाला रहाओ। जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हावा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब।

तरला जवानी आप पानी इच मन की पूरी है। सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूर है। श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वढ़ंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रहीये मुइये। पिर रावे पाए प्यारे सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रचाया। आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया। सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी। नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचा साहे सवारी। निर्गुण मंतड़िए पिर देख अधूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये। पिर रव रया पर पूरे राम पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता। तन बाली भोली पिर सहज रावे मिलिया कर्म विधाता। जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे। नानक कामण सा पिर भावे सबदे रह हदूरे। सुहागणी जाए पुछ

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सों रलिया माणै सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाणै कामण वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रली आला जुबन बाला अंदन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वढांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिय लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रावी जय अंधन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझे गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा सब सवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन नि कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी सच्चा शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वढ्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वढ्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचै शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुती मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आय अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मन मुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मन मुख सोए रहे भागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिया सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख न होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखियां नु ते सच्चा कह दरबारा राम खोटे दरगह सुटियां नु उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुखटे संसारा खोटे खरे परखिया नु ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी ज्यो तिसदी वड्याई राम ज्यो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी है पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम
माया केवा पारा जगत प्यारा आवण जान दुख पाई बेका कीड़ा बिकस्यों लागा बिष्टा मैं समाई जो तुर लिखिया सो एक मावे कोई न मिटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूर्ख कूक मोहे गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुदना काई राम गुरमुख यो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साज समाई सच परे पंडारा गुरमुख होवै सोई बूजै साज सवारन हारा आपे मेले सो हर मिलै होर करना किशु ना जाए नानक विण नामे परम भुलाया इक नाम रते रंग लाए वडहंस महला तीजा ए मन मेरे आयावा गौण संसार है अंत सचन बेड़ा राम आपे सचा बख्श लए फिर होए ना फेरा राम फिर होए ना फेरा अंत सचन बेड़ा गुरमुख मिलै वड़ियाई साचा रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई सच्चा मन पाया सच वसाया शब्द रते अंत नबेरा नानक नाम रते से सच समाने बहुर ना पव जल फेरा माया मोह सब बरल है दूजे पाए खुआई राम माता पिता सब हित है हेते पलचाई राम हेते पलचाई प्रभ कमाई मेट ना सकै कोई जिन श्रेष्ट साजी सो कर वेखै ते जेवड़े अवर ना कोई मन मुख अंदा तप तप खपै बिन शब्द सांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खुवाई एहो जग जलता देख कै भज पए हर सरनाई राम अरदास करी गुरपुरै आगे रख लेवो देहो वडाई राम रख लेवो सरनाई हर नाम वडाई तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता जत सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम आपे दे बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर चाखिया दरसा चै सदा है साचा साचै शब्द सुपाखिया घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर नाम मेरा मन वसाई राम हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवै सांत पाई मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई हौ जीवा सतगुर देख सर से राम हर नाम दृढ़ाए जप हर नाम विगसे राम जप हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाद लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसे हौ जीवा सतगुर देख सर से कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा राम हौ मन तन देवा तिस काट सरीरा राम हौ मन तन काट तिस देई जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग पाया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुखदाते
देहो सतगुर चरण हम धूरा, कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वडभागी जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा, हाँ गुरबिन हाँ गुरबिन खरी निमानी राम, जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हरा हर नाम त्याया, जिस कारण हाँ टूंढ टूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी, हाँ गुरबिन खरी निमाणी। जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम, तिन चरण सिरे वै हम लागे तिन कै पाए राम। हर हर चरण सिरे वै तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया, तू वरदाता अंतर जामी मेरी सरदा पू हर राया। गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी, आंदन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए। हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम, हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नामा दारू राम। हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुखे अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे, हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे। हर आपे पुरख निरंजन सोई राम, हर आपे मेले करे सो होई राम। जो हर प्रभ पावै सोई होवै अवर न करना जाई, बहुत सियाण पो लया ना जाई कर थाके सब चितराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवर ना कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया। गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे। सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे, जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई राम। हर नामो हर नाम देवै मेरा अंत सिखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सिखाई। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही, तिथे हर हर नाम छडाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर

जिनी दर्शन जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तेने फल तेने फल जन्म सब बिरथा गवाया राम ने फल जन्म तेन बिरथा गवाया ते सागत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर्शना करी आओ जिनी हर हर नाम ना त्याया जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम गुरमेल मेरा प्यारा हम सतगुर करै भक्ति राम हर हर सतगुर करै भक्ति जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुरबिन अवर

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम। साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पा राम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा। आंदन सह समाध हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम हो पाइया राम जित हर प्रभ जापै।